बिखै समाहे दोहरा। जब आए सुप्रभ को भयो जन्म तरह जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कैद सुनाए कब बाच दोहरा। ठाड़ पहो मैं जोर कार बदन कहा सरने आए, पंथ चले तब जगत में जाब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुम रे त्यान को नित उठते हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देह मो कोटक बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरा वसास करोर जलेस दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेत, सुरग बा सरग बर करा सगरी पुरी समेत चाओ पई। जो यह कथा सुने अरगावै दुख पाप तेह निगत न आवै, बिसन भगत की ए फल होई आज ब्याद छुवै सकै न कोई। संबत 1755 हाड़ वदी प्रथम सुख दावण, तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहु लेहु सुधारा दोहरा। नेत्र तुंग के चरण तार सद्रव तीर्थ रंग, श्री भगवत पूरन की ओ रागबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद, ग्रंथ सकल पूरन की ओ भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने, ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह माते एक न मानो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने, ओ श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तो हे बखाने। दोहरा सगल द्वार

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वधिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावणी आईया शब्द ता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हूं करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजाईया

ताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब से अधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वास्तत जी नह जाई नेत नेत रख उर तारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातू नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पाई हुई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा तानु मन थी वह हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा तान मन थी वह हरिया पावड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे भावजल बिखम सगाहो गुर सबदी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कलमह एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैरों कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोय न जाए जे आवै तो दयाहे सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जाप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरते आदरगह पाई ठाओ कहु नानक कृपा करे जिसनु एह वात दे जाग मह उत्तम काढ़ी अहे विरले के ई के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन होआ आप दयाल मन होना विसारियन साध जना कै संग पवजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खेन माहे बेदारियन

अमृत बाणी हर हर देरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे

0: बिखमथान बहुत बहुत हरिया अनक राख सूरूटा बिखम गार कर पहुंचे नाही।
1: गार पाठ भारा करना जिवें ज्ञानी

कोट ब्रह्मांड उदार रहाऊ। करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख सामार हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है। क्या ए भूपत बपुरे कही है कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुखदाते सब नानक जगत तुम्हार है। सार

स्वत पाई न पहुँचै तहा तहा तू रखा रहाओ। अंधकूप ग्रह महतन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन।

अनेक काज इथे जमक ला के जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है अनेक काज अनेक धा वरता ए धा वरता पाठ इकट्ठा ही करना पर धा वरता नहीं कहना धा वरता जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है उर्जो आन जंजारी रहाओ।

0: हाउ नाही नाही किछ मेरा ना हमरो बासचारी करन करावन।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
3: Mahalla Panjwa, Mohani Mohat Rahe Na Hori, Sadhak Siddh Sagal Ki Pyari, Tutte Na Kahu Tori Rahao. Khad Sastr Uchrat Ras Nagar, Tirth Gavan Na Thori. पूजा चक्र बर्त नेम तपिया ऊहा गैल न छोरी अंधकूप मह पतित होत जग संतहो करो परम गत मोरी साध संगत नानक भयो मुक्ता।

जप तापा तुम ते तत् पछानेओ कर मस्तक तर कट्टी जेवरी नानक दास दसानेओ सारग महला पंजवा हर हर दियो सेवक कौ नाम मानस काको बपुरो पाई।

0: तुम तारे सुमत संग तुम्हारे पाए।
1: जन्म जन्म के इसे तरह उच्चारण करना, जन्म जन्म के इथे जमक ला के बिखई तुम तारे, बिखई ही उच्चारण करना, बेखई नहीं कहना, बिखई तुम तारे सुमत ते मम्मे ते अधिक दा प्रभाव देना, सुमत संग तुम्हारे पाई।
0: अनेक जोन प्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाय, जो जो संग मेरे साधु कै ते ते पतित पुनीता, कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारग महला पंजवा, ठाकुर बिनती करन जान आयो, सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मह जाको छायो, संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्टायो। नैनो संग संतन की सेवा चरण चारी के

आमले वलागी सज्जन सोरिदा सुहेला सहजे सो कहिए बड़ भागी रहाओ रहत बिकार अल्प माया ते अहंग बुद्ध बिख त्यागी दर्श प्यास आस एक है की टेक ही है प्रयापागी अचिंत सोए जागन उठ बैसन अचिंत हस्त बैरागी कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागी सारग महला पंजवा आव जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन कहो जो उद्दम करता।

मिटह कलेस त्रास सब नासै, साध संग हित लावै रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावै। तज अभिमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावै। दामोदर दयाल आराधो, गोविंद करत सोहावै। कहो नानक सब ही को, कहो नानक सब सब की होए रेना। हर

सिमर ठाकुर जिन सब किछ दीना, आन कहा पह जावो। सफल सेवा स्वामी मेरे की, मन बांछत फल पावहो। कहो नानक लाभ लाहा ले चलहो, सुख सेती घर जावहो। सारग महला पंजवा, ठाकुर तुम सरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया रहाओ। अन बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया। बाह पकर काट लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुरबंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। सारग महला पंजवा, हर के नाम की गात ठांडी। वेद पुराण सिमृत साधु जान, खोजत खोजत काढ़ी रहाओ। शिव बिरंच अर इंद्र लोक, ता मह जल तौ फिरया। सिमर सिमर स्वामी भय शीतल, दुख दर्द भ्रम हिरया। जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा। नानक की बे

आवै राम सरण वड भागी, एकस बिन किछ होर ना जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच क्रम आराध्य हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकथ कथा रस, साचै सहज समाया। कर किरपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिय, जो राते प्रभ निर्बाणी। सारग महला पंजवा, जाते साधु सरण गही, शांत सहज मन भयो प्रगासा।

पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसै सब नेरै रहाओ। बंधन तोर राम लिव लाई, संत संग बन आई। जन्म पदार्थ भयो पुनीता, इच्छा सगल पुजाई।

साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अबिचल नीव तराई सतगुर कबहू डोलत नाही, गुरु नानक जब पय दयारा सर्व सुख।

0: माखी पाठ ते विश्राम याद रखना। माखी राम की तू माखी।
1: जय दुर्गंध तहा तू बैसह महा बिख्या मद चाखी रहाओ। कित है अस्थान तू टिकन ना पावह ए बिद देखी आखी। संता बिनत कोय न छाड़या संत परे गोबिंद की पाखी। जी जंत सगले तै मोहे बिन संता किने न लाखी। नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी। सारग महला पंजवा माई री काटी जम की फास। हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास रहाओ। कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास। संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस। महा उद्यान अटवी ते काढ़े मार्ग संत कहेओ। देखत दर्श पाप सब नासे हर नानक रतन लहेओ। माई री अरेओ प्रेम की खोर दर्शन रुचित प्यास मन सुंदर सकत ना कोई तोर रहाओ। प्राण मान पात पित सुत बंधप हर सर्बस तान मोर। त्रिग शरीर अस्त बिष्टा क्रेम

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala, baby. Yeah. Mercy.

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा, ताकि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पाट कीर्त साहिब जी दी रचना तो उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण कीता है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहिब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहिब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहिब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहिब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणां विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर उच्च

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होयां थक जावां, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी पटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खदियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जिहड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हां, साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नू टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओ केड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नू चिकड़ विच खिड़े हुए नू पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक, कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोना दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके ओनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती, प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा हुए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक ओनू नजर टिका के देख दिए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि ओनू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिट ते ला लेंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं। मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम की दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खिड़ मूंह बखाले। हुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है। कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है। हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है? ओह असमान दे उत्ते, ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार ले बखेर ले। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है। ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओहदे विच भी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। ए कैसी प्रीत है? भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी ए पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिए खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ये बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभन वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रव्या है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नूं फिर समझिए मन रे क्यों छूटा बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नूं कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनूं प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नूं समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वरतने जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जेड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुर्दे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं ता प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नु जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन दी गल कीती हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीत ना जाए किन्हें जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनियां गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा ए मिनसान तू वजूद विच तां आया है कि परमात्मा दी इबादत करें परमात्मा दी बंदगी करें जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटने
बंदगी करके ही जिंदगी है, जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा, जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लईए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्हां ने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए, फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साईं नूं नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नूं इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उन्हां नूं जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन, ते हकीकत एवे असी कहांगे मिट्टी मिठी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिठी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिठी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है, ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो चलिया पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए, ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी, पूर्ण तौर ते आप इको दम जमीन ते डिग पे। कहन लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना। ते किसे ने उत्थे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच उदे जिक्र विच उदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्होंने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा, लियाओ पानी लियाओ आव ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। वो महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी नहीं खोनी। हुन प्रेम बद्दा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपा वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां, उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई, कैसी भगती कीती, केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं
अपने आप नूं पूर्ण तौर ते रब दे चरणां विच उन्हां ने फिदा कर दिता, उन्हां ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होण वालियां कुछ उदाहरणां नूं अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया, सच्चे पातशाह ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਸੀ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੁਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਘੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕੋਦਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਇੱਕੋਦਮ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਬਲਾਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਵੇ ਸ਼ਿਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਪਣ ਹੋਵੇ।

आप दी भेटा कर रहे हैं। ए शर्ब रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल। अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए, ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाय अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछे पावे,
0: एक वस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिर ले,
0: तो मुड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से ना ही चारा,
0: ठाको की जय सद नमस्कार,
1: जापे मन लगा प्रा मीठा,
0: सर्व सुखता हु मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सुख नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कछ बहो शाह होले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही गोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते सागे रखे,
0: रोकी आज्ञा मन ने मथे,
1: उसके चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक भांत माया के हित,
0: सरपर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया से रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दी सह सो चालन हार,
0: लपटरे उतै अंधे अंधार,
1: घटाऊ से जो लावे ने,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
0: मिथ्या हो मैं ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या रथ हस्ती असु वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता,
1: मिथ्या ध्रो मोह अभिमान,
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान,
1: अस्थिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीवे हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे,
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेकत पात्रया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार को तावहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत बिकारा,
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: वृत्ति साक्त की आरजा,
0: साच बिना कह हो सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुख आवतता कह दुर्गंध,
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाय,
0: एक बिना ज्यो खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपन के निरार्थ दाम,
1: धन तन तेजन दे कट बस्यो हर नाउ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखो गंड लावत,
1: जानन हार प्रभु प्रवीन,
0: बाहर पीक न काहू हीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन मैं मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता,
0: नानक निजन चरण पराता,
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन,
1: आप आप करत नबेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
1: पाप सियान सकल ते रहत,
0: सब कुछ जाने आत्म की राहत,
1: जिस भावे तिस लये लड़ लाए,
0: शांत नंतर रहा समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जप

है धार्मिक इकट्ठ धर्म दी समझ कोई नहीं। जैसे कोई समाजिक इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ही ना होवे, मां है पिता है कि चाचा है ताया है पुत्र है भैन है भरा है ये मामे ने मासियां ने इसकी समझ ही ना होवे। बहुत वड्डा समाज का इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ना होवे ओ इकट्ठ सारे दा सारा बेमैने। बड़ा भारी धार्मिक इकट्ठ होवे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च धर्म दी समझ ना होवे धर्म दा बोध ना होवे। और ये गल कबूल कर लेनी चाहिए है जमीन देते जितने धार्मिक मंदिर ने इतने भी धार्मिक मनुख नहीं ने नहीं जितनिया मस्जिदां ने जितने मंदिर ने जितने गुरुद्वारे ने जितने जैन मंदिर ने जितने बौद्ध मठ ने जितने सनातन मंदिर ने जितने चर्च ने जितने सिनेमाबाग ने इन्ने धार्मिक मंदिर और हर शहर के सैकड़े धार्मिक मंदिर हर शहर दे कोई धार्मिक मनुख नहीं आता नहीं आता। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर मां है होंदा ते है चंदन का बूटा पर हर जगह नहीं आता हर जंगल दे नहीं आता। होंदा ते है केसर पर हर जगह नहीं आता सारी दुनिया दे केसर स्पेन दे आता है कश्मीर दे आता है एक अद मुलक होर बाकी किधरे नहीं आता। बड़ा बोके वेख्या गया है नहीं आता इधर हिमाचल दे भी बोके देखा गया नहीं होया कश्मीर दे बाकी इलाके भी बोके देखा गया नहीं होया बीच के देखा गया नहीं होया। सिर्फ एक छोटा जिहा खिता हाईवे दे उत्ते कश्मीर नू जिहड़ी सड़क जांदी है उहदे उत्ते एक कस्बा पैंदा है पंपोश उत्थे आउंदा है और किधरे भी नहीं आउंदा। होंदे ते ने संत होंदे ते ने धार्मिक मनुख गुस्ताखी माफ हर शहर दे च नहीं आउंदे। होंदा ते है केसर हर जगह नहीं आउंदा होंदा ते है चंदन हर जगह नहीं आउंदा होंदे ते ने हीरे पर हर पहाड़ दी गोद दे च नहीं आउंदे नहीं आउंदे। होंदे ते ने संत हर शहर दे च नहीं आउंदे हर शहर दिच इंजीनियर होंदे ने डॉक्टर होंदे ने लॉयर होंदे ने साइंटिस्ट होंदे ने हर शहर दिच धनवान होंदे ने कारोबारी होंदे ने व्यापारी होंदे ने हर शहर दिच दार्शनिक फिलोसफर राजनीतिक होंदे ने हर शहर दिच संत नहीं होंदा भगत नहीं होंदा हर शहर दिच रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। मैनू एक दफा फिर कहण देना हर शहर दिच इंजीनियर होंदे ने डॉक्टर होंदे ने लॉयर होंदे ने दार्शनिक फिलासफर होंदे ने हर शहर दे कलाकार होंदे ने हर शहर दे राजनीतिक होंदे ने व्यापारी होंदे ने चोटी दे धनवान होंदे ने हर शहर दे रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए एक चोटी दा व्यापारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्म ज्ञानी बनना औखा। एक चोटी का इंजीनियर डॉक्टर बन जाना साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहिए धर्म नू समझण वास्ते। बड़ी मुशक्कत है मानसिक बड़ी मेहनत है मानसिक जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत गाल बड़ी घालना है बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ होणगे कोई धर्म दी समझ रखदा होवे ऐसा सिलसिला बहुत घट आउंदा बहुत घट आउंदा। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा धार्मिक जगत विच बस दो दी समझ चाहीदी है प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं फिर

एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सरमाने समस्त निधाने नमो देव देव भेखी भेवे नमो काल काले नम सर पाले नम सर गाउने नम सर पौने नंगी अनाथे नृसिंह परमाथे नम भान भाने नमो मान माने नम चंद्र चंद्रे नम भान भाने नम गीत गीते नम तान ताने नम नृत नृत्य नम नाद नादे नम भान पाने नम बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूप प्रभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूप नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जुगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जुगेश्वरंग परम जूते नमो नित नारायणे कुरूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सह सह नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त उल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वरं पुरोच्छ पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अछेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है पीत है पे है प्रभु है जू है देस है भेस है भुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूप नमो सरमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमता नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीज अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूप को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपट संत वै प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चाल भोगे चाल राज टाल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पहने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जूता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मान तरमान देव पेव आद ओदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराज हि अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो फैल अनुराग नाम काम विहीन पेख धाम हुनह जाय सर्व मर सर्वत्र मर सदै मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जानी जेह वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानी केह जे बतात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चत्र चक मन ही पुरतीन लोक चौदह के बेख्या जग जापी जेह जाप आद देव नाथ मूर्त थाप सब जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूरन पुरख पार सर्व विश्व रचे स्वयं पहव गड़न भंजन हार कालहीन कला संजूत अकाल पुरख देश धर्म तंस भरम रहत अभूत लख भेस अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्त तेग पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंग ही न भंग नात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यान पेख सर्व शास्त्र न जानी जेह रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाकह नेत भगत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चेत मद भार छंत प्रसाद

निकाम मन मन प्रणाम निरपय निकामा तो दुत प्रचंड मित गाता खंड अलस करम दिरस धर्म सर्ब प्रनाड अंड बाड चाचरी छंत प्रसाद गोबिंद मुकंद उदारे अपारे हरियंग करियंग नर नामे अकामे पुजंग प्रयत छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दान चत्र चक्र जान चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दान चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र पर है पवित्र परथी स आदि स अदर स अकर स भगवती छंत प्रसाद कथते के आ छे ज देस के आ भिज पेस के आ गंज कर मैं के आ भंज पर मैं के आ भिज लोक के आ दित सो कह के आ वधूत बरन के बेभूत करन के राज प्रभ के धर्म तुज के सोक बरन के सर्ब भरन के जगतं कृति के छत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव अनूप के आदा देव है के आप अपेव के चतरंग बेहीन के एक अधीन के

को रोजी देहांत है के राजकारी में के कर्मकारी में के सर्वंकली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पवन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग काली में के परमंग फही में के अकला लामे के साहिब कला में के हुसन अल वजू है तम मोल रुजू है हमेशा सलाम है सलीख तम मुदाम है गनी मोल सकास्त है गरीब उल परास्त है बिलुंदल मकान है जमीन उल जमान है तमी जोल तमाम है रुजू अल निदान है हरी फुल अजी में रजाय के यकीन है अनेक उल तरंग है अभेद है भंग है अजी जोल नवाज गनी मोलिख राज है निरुक्त स्वरूप है त्रमुक्त बेभूत है भर भूत प्रभा है सुजूत सुदा है सदैव सारूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैव काम है दरबाद स्वरूप है अगाध है अनूप है अगाध है अनूप है ओवंग आद रूप है अनाद स्वरूप है नंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबाध अगंज अगाध सुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानुराग है त्रिभुत स्वरूप है छेज है छूत है नरक प्रणास है प्रथुल प्रवास है निरुत प्रभा है सदैव सदा है विभूत स्वरूप है प्रजूत अनूप है निरुत सदा है विभूत प्रभा है अनूत स्वरूप है प्रजूत अनूप है चाचरी छंद।

ता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं ज्योता सर्वं मुक्ता रसावल शांतो प्रसाद नमो नरकनाश सदैव प्रकाश अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जा

दूर है हमें सुल सलाम है समस्त उल कलाम है के साहेब दिमाग है कू सनल चराग है के कामल करी मैं के राज करी मैं क्यों रोजी देहांद के राज कर हिंद करी मुल्क माल है क्यों सनल जमाल है गनी मुल्क राज है गरीब बोल नवाज है हरी फुल सिकान है रासल फिकान है कलंक प्रणास है समस्त उल नवास है अगंजुल गनी मैं रजाय करी मैं समस्तल जुबा है के साहेब किरा है के नरक प्रणास है बिहिस्तुल नवास है के सर्ब लुगवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईसा समस्तुल अदीस है आदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जिमिनुल जमा हमी कुल इमा करिमुल कमाल है के ज्वरत अजमाल है के चलंग प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है क्या मित्तो बेपूत है क्या मित्तो पसा के आत्मंग प्रभा है क्या चलंग अन्नांग है क्या मित्तो अपांग है मद पार शांत है प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर पर भांज अनगन प्रणाम मूल मन सलाम हर नर खंड भर नर अमंड अनपवनास अनपवनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थर मुदाम अनछेज अंगासन भंग उपमा पार गात्म उदार जल थल मंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव नास त्रित धर तुरास आ जान बाहो एक सदा हो ओंकार आदि कथन अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात अजे जनम बात अन झंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आ डीठ धर्म अत ढीठ कर्म।

अमृत अमृत अमृत अमृत करुणा करत करत करत तरण तरत अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृत अकृत अमृत अमृत अजबाकृत अमृत अमृत नर नायक है खल कायक है विश्वम्भर है करुणाल है नृप नायक है सर्पायक है पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जाप जापन है अकलंकृत है

पाहनानु मानत महा मूढ़ का छिपे धन जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेवा पापनी बुद्ध है जेती बरनद भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसोरा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप सरूपा रंक पहो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पद खान बाहुर रच दीनी कहू फूल राजा हो बैठा कहूं फूल राजा हो बैठा कहूं सिमट पहो संकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंग पवाद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जेते उठवत उत पाता सकल मलेच्छ करवरण काता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे पुरुख जावन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल कोय कबार तह ताके काल निकट न है रक्षा हो ताह सब कल दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताव तन कम हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब

पात दल हो बारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख तेलह बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता केल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अस्तुज जप है दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख नत सब आपत।

संबत 1700 पणज अर्ध सहस फोन तीन कह ज भाद्रव सुधी अष्टमी रावारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस

करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सचा सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देह सो जन पावे पावे ता सो जन देह जिसन होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिर दह दिसक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पै।

नानक सुनो संत हो कथियो कथ कहानी। ए मन चंचला चुतराई कने न पाया, चुतराई न पाया कने तू सुन मन मेरे। माया मोहनी जिने तो भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिने की जन ठगौली पाईया। कुर्बान किता ते सब

नहजा सहसा कित संयम रह कर्म कमाय सहसा जीव मलिण कित संयम तो ता जाय मन तो भवदला गह हर सं रह चित लाय कह नान गुर पर साधि सहज उपज सहसा वजाय जिया मैले बारह निर्मल जी हो ता मैले तिन जन्म जुव तिनी

सेवा सकत आप उपाय क्या करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेख्या गुरमुख सब बुझाए तोड़े बंधन होवे शब्द मन वसाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनों आप करे सो होवे एक।

गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले इती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

0: राग
1: अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, अदुती है, अखंड है। इहदा मतलब है अदुती दा कि उहदे वर्गा दूजा कोई नहीं। अखंड दा अर्थ है जिहड़ा कदे नाश नहीं हुंदा। खंड दा अर्थ हुंदा खंड, खंड टोटे टोटे, ऐड़ा गेतर रग गया ते अखंड जिहड़ा कदे जिहदे टोटे नहीं हुंदे, खत्म नहीं हुंदा। ओंकार सर्ब का प्रकाशक, ओंकार उत्पाती किया दिन सब राती, मतलब ओंकार बचन कह के सारी सृष्टि नूं रचिया। तां कहिंदे ने सर्ब का प्रकाशक, मतलब सारी सृष्टि नूं प्रकाश करने वाला वाहिगुरु। सत तत्ते सही लगी है, सच्चा है, नाम प्रसिद्ध है। नाम दा अर्थ ना आम भी बनता है, ना दा अर्थ नहीं है तो आम दा अर्थ रोग। जिस परमात्मा नूं कदे रोग नहीं लगता और उहदा नाम प्रसिद्ध है। कोई बंदा प्यारे देश प्रसिद्ध हुंदा, कोई संसार च प्रसिद्ध हुंदा, परमात्मा ते करोड़ां ब्रह्मंडां दे विच प्रसिद्ध है। चौपदे वाहिगुरु करता पुरख, करता दा भाव सृष्टि नूं पैदा करन वाला। पुरख दा अर्थ है परिपूर्ण परमात्मा, पुरख दा अर्थ मर्द भी है। एका पुरख सबाई नार, एक परमात्मा मर्द है, आपां बाकी सारे जीव उहदियां इस्त्रियां हाँ। इस वास्ते पुरख दा अर्थ है मर्द भी है। निरभउ सत्संगीओ, भउ कहिंदे ने डर नूं ते निर कहिंदे रहत। जिहड़ा वाहिगुरु डरन तो रहत है, भाव किसे तो डरदा नहीं वाहिगुरु। निरवैर, वैर दा अर्थ हुंदा वैर, ते निर दा अर्थ रहत। जिहड़ा वैर तो रहत है मतलब है कि डर भी किसे दा नहीं वाहिगुरु नूं, ते फिर जिहड़ा परमात्मा है वह वैर तो भी रहत है, उहदे मन च वैर किसे नाल नहीं। सत्संगीओ अकाल मूरत, मूरत दा अर्थ हुंदा होंद, हस्ती। जिहड़ी परमात्मा की होंद है अकाल है, काल दे विच नहीं। काल कहिंदे मौत, और समय तो परमात्मा जिहड़ा है रहत है, काल तो समय तो वाहिगुरू दूर है। अजूनी जूना तो परे सत्संगीओ, असी जीव 84 लाख जून दे विच आ, पर वाहिगुरू अजूनी है, जूना तो रहत। सत्संगीओ सै भंग सुते प्रकाश है, जिन्हों कलगीधर जी ने लिखा अनुभव प्रकाश, अपने आप तो बनया हुआ। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजर सोए। किसी संपर्दा का मुखी दुनिया तो चला जाए तो 5, 7, 10, 20 संपर्दा मिल के तो नवा थाप देंदी आ, पर परमात्मा इदा नहीं थाप्या गया। ना तो समाए न बाप के तू जाया। सत्संगीओ नार न पुरख न पंख नू साचो चतुर स्वरूप। इसलिए जो परमात्मा सुते प्रकाश है, सै सुते भंग प्रकाश, इहदा शुद्ध उचारण है सै भंग सुते प्रकाश, अपने आप तो बनिया होया। गुर कहिंदे पूजनीक ते प्रसाद कहिंदे आनंद स्वरूप। सो जिहड़ा परमात्मा एक है, सर्ब का प्रकाश है, सत चित आनंद स्वरूप है, सतगुर प्रसाद गुरु जी की कृपा द्वारा पाई उहदी प्राप्ति हुंदी है। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीआं दे विच इह पवित्र मंत्र 32 वार आया। संपरदाई महापुरशां अनुसार जे मूल मंत्र सब तो पहला नानक होसी पी सच तक मनीए, इह 32 वार है, ते जे सत्संगी विच उहनूं भी मनीए 33 वार गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है इह पवित्र मंत्र। सो सचे पातशाह जी कृपा करदे हन।
0: राग गोंड चौपदे महला चौथा घर पहला।
1: गोंड सत्संग एक राग है, सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर, अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर। क्योंकि जो राग मला आप पढ़ते सत्संगीओ तो एक एक राग तो उदियां 5 स्त्रियां ते 8-8 पुत्र, इसलिए 8 पुत्र ने सत्संगीओ इसरी राग दे, मतलब इसरी राग दा पुत्र मन्या गया। इन गाउण दा जिहड़ा समा है ये सत्संगीओ दिन दुपहर दे समय, ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਔਰ ਗੋਂਡ ਗੰਭੀਰ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਖੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ ਅੱਠ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਹ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੀਸਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਡੱਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਗੇ ਹੋੜਾ ਡੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੋਡ, ਕਿਤੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗੌਂਡ। ਇਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਗ ਹੈ ਸਾਰਗ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹ ਧਨਾਸਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧਨਾਸਰੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਧਨਾਸਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਗੇ ਹੋੜਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਗੋਂਡ। ਚੌਪਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੋਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗੀਓ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
0: ਜੇ ਮਨ ਚਿਤ ਆਸ ਰੱਖੇ ਹਰ ਉਪਰ।
1: ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਮਨ ਨੰਨੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਤੱਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਚਿੱਤ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖੇ ਹਰ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ

किस कारण ग्रहत अजय उदासी, किस कारण एव भेख निवासी। इस संबंधी थोड़ा जहा मैं अर्ज करा। मुसलमान मुसलमान तो बिना खुदा दी गल, खुदा दा उपदेश किसे दूसरे को नहीं सुनना चाहते। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज जद खाना है खुदा जद्दा विच गए, मक्के मदीने गए, करबला गए, तो केड़ा लिबास से आसा हथ किताब कछ कूजा बांग मुसल्ला दारी। इस रूप च उपदेश लेना है तो आप ऐसे च दे देने, मुसल्ला भी रख ले, कूजा भी रख ले, भावे बांग सतनाम दी दिती है पर दिती है। आसा हथ किताब कछ, बगल दे सतगुरां दे एक पोथी आउंदी सी जिथे बाणी उतरदी सी, आप लिख लैंदे सी। उस तो मुसलमाना नूं इह भुलेखा रिहा है कुरान शरीफ है। आसा हथ किताब कछ कूजा बांग मुसल्ला दार, ये भेख बनाया। इस भेख नाल बगदाद दे सऊदी अरब दे वख वख जो इस्लामी केंद्र सन, महाराज ने उत्थे सच दी गल सुनाई। जोगियां कोल जद गए ते जोगियां दा भी यही नुक्ता निगाह है, ग्रस्ती सानू उपदेश नहीं कर सकता। ग्रस्ती सानू परमात्मा दी गल नहीं सुना सकता, असी ग्रस्ती कोल नहीं सुनते। तो महाराज जद जोगियां कोल गए ने, फिर बाणा उदासियां दा भगवा वेस। ताई जोगी कह रहे ने किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण ए भेख निवासी। ए भेख क्यों धारण कीता उदासियां वाला। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद ये जन्म तो ही उदासी सन। उपरां 5 साल दे जद होए, एक दिन दिन भर लब्बे नहीं, माता जी एक घर दूजे घर तीजे घर लभदियां, जिथे बच्चे खेडदे ने उन्हां तो पुछदियां ने श्री चंद किधरे देखे। बच्चे कहिंदे ने साडे नाल तो खेडदा ही नहीं, आउंदा ही नहीं, पड़ोसियां दे घरां च जांदे। श्री चंद ते नहीं आया सी, वो किथे आउंदा साडे घर, बुलाउण ते भी नहीं आउंदा। चिंतातुर हो गए माता सुलखने, किथे गया होना। पिंड तो बाहर निकले, तलवंडी तो बाहर निकले, की देखिया उजाड़ दे दरखत दे थले बैठे ने समाधि लग। तो माता जी थोड़ा जहा डांट दे लहजे च कहने ने, इथे उजाड़ च की पै कर दे, बच्चिया नाल खेडिया करो, घर दे च रिया करो, छोटा जिया बालक। उस वक्त बाबा श्री चंद ने भी यही लफ्ज कहन जो जन्म साखी दे दर्ज ने, मां जी सब उजाड़ी ते है, उजाड़ी ते है, आपां इत्थे रौनक दे च बैठे हैं, आनंद दे च बैठे हैं। 5 साल दे बाल जन्म तो ही निराश ते उदास सन। बाबा श्री चंद दे नाल एक पंथ चलिया उदासी, और शायद आपनों पता होवे सारे देश दे च ते अफगानिस्तान ईरान ते कुछ रशिया दी स्टेटां दे च नानक पंथ दा जो प्रचार कीता उदासियां ने कीता। ते भी मैं अर्ज करा सहजे सहजे कुछ 5% बाद विच उदासी भ्रष्ट हो गए। धन संपदा वध गई, शक्ति वध गई, सिर्फ 5% तो इन्हां कोल गुरुद्वारे लै लै गए, नहीं तो सारे इतिहास

सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक लड़ीवार विचार अंदाजन कई दिनों तो दास साहब जी के सामने रख रहे हैं। इन बाणी दियां पंक्तियां नू आधार बना के राम कली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कमन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे। हर दर तो हर घर तो उदास होके निराश होके जिस घर दी जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई ते दसे। सतगुरु कहिंदे ने कोई ते दसे ओ दर कैसा है, ओ दर किथे है। दर घर दी व्याख्या तो पहले दास ने इस नुक्ते नू लिया जिस दर कारण फिरा उदासी। इस तो बाद दर घर दी गल उदास कहिंदे ने उद आसन अपने कोल बैठना। ते अपने कोल कौन बैठेगा जो सारियां तो निराश है। आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। जितने चिर तक मनुख सुखां दी डोरी दूजे नाल जोड़ी रखदा है दूजे तो निराश नहीं आउंदा वो फिर अपने नेड़े आउंदा भी नहीं वो उदास नहीं आउंदा। अपनी आत्मा दे नेड़े होण तो पहले अपने मन दे नेड़े होना आउंदा और अपने मन दे नेड़े होण तो पहले अपने तन दे नेड़े आउंदा। मनुख दूजियां दे नेड़े है अपने तो दूर है। जिस दर कारण फिरा उदासी निराश कौन आउंदा है। दास ने परसों अर्ज कीती सी प्रथम सत्संगी होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए जपरे होवे बाणी बाणी चोट कर जाए। वाहिगुरु वाहिगुरु जपरे होवे वाहिगुरु तीर दी तरह लगे ये निराश हो जाएगा उदास हो जाएगा। दूसरा अपनी अकल तो चोट खावे। अकल इतनी महान कि दुनिया छोटी हो गई है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। अपनी अकल तो चोट खा के भी दुनिया विच कुछ सियाने पुरुष निराश होए ने उदास होए ने। तीसरा संसार तो ही कोई वड्डी चोट लग गई है कोई हादसा हो गया है। छोटी दा धनहट से दिवालिया हो गया बड़ी प्रतिष्ठा से बेइज्जती हो गई है बड़ी समर्था ते शक्ति से सब जांदी रही। ये जगत तो चोट खाके भी मनुख पूर्ण तौर ते निराश हो सकता है जगत तो और उदास हो सकता है। हुण मैं अर्ज करा जिहड़ा अजे तक टोटली निराश नहीं उदास नहीं पहला तो कोई गहरा सत्संगी नहीं है कोई गहराई नाल सुनदा ही नहीं है।